मोबाइल डाटा सर्फिंग में असाध्य कम खर्चिलो छिमछिम को खबर अब थाहाखबर.com मा पानी जीवन को आधार हो तर स्वच्छ पानी स्वस्थ जीवन को आधार हिमालयाज ऑन टॉप लांगटांग हिमाल को स्वच्छ प्राकृतिक पानी अब तपाई को हाथ में अंतरराष्ट्रीय स्तर को अत्याधुनिक प्रविधिबाट प्रशोधित ऑन टॉप ब्रांड का पानी 500 देखि 900 मिलीलीटर का आकर्षक पेट बोतल में उपलब्ध छ। थप जानकारी का लागि हिमालयाज स्प्रिंग वाटर पाली नया बानेश्वर काठमांडू फोन 4781-4780-7624 वा हिमालयजवाटर.com.np लॉगिन करनुहोस्।

0: समुदायको लागि सामुदायिक रेडियो झलझला एफएम 96.4 MHz। झलझला ट्रैक चेक। यति बेला हाम्रो स्टुडियोको घडीमा बिहानको 7 बज्यो।
1: यस टाइम चेक का प्रायोजक दीर्घायु हस्पिटल प्राली तिलोतमा 5 मडिग्राम रूप

0: मेरो लागि मायुका लागि त सुनसरी गाउँपालिका यो मस्त जरुरी सूचना जो पेला खेमरिदे गरम ओगोत्री जेऊ पेला सुनो फुरी कता ओचुगुरी जेऊ आउ पेला क वन जंगल ल भे लागिने मस्त ज सम्भावना ताई आउ ये गिनी प्राकृतिक सम्पदा र त खेप त जस खेमनादे वातावरण मिले ने लख्यापा असर केने री उमुल र थाउने भुछे ताने वायुमण्डल ल कार्बन मस्त ज तानागे भने जलवायु परिवर्तन ल असर सकेने सुनो माखर नामे ल भे लागिने सज जिनी गिनी लापरवाही सुनो चासो खेलगेमा दुख जिन्दे को ठेल मेला की नाटे जन धने में खेता छेती ताऊ जुबो होकाई
1: गेछो छालियाला बल्ल मेला की ने पूरा रहुदे नौ पूरा ले चौसो ख्याल गिरुए
0: बन जंगल सरों मेरा आरिंदी बाने एमेल एमे ओसो थामे लाली उसो कर पोतर राले पार जगे रहते
1: सलाई लाइटर सियाला मे सचाउने चीज राले जबांगजा र यामा देने पोल गेने या इतो चीज र रहिदे बन जंगल याल के भाबा या
0: पिकनिक बन भोज बाको मे सचाउसु छिन्नी मेले चौसो सैदे के खनाले बन जंगल ओसो छामि दैके बारे प चुरोद विधि ओरे बनै कोबा
1: नान्थर नाम लिजौ वन उपभोक्ता समूह राई सामुदायिक बने हो नि ढाल्ले छ अनुगमन दिने व्यवस्था चौसर गिरुए
0: गेछो छामेला खोरे ल चाउसी पोलिए होइदे तरिम गाई गेजो मेके लाइजु अब नजरे बनाई गेन ये ल गेजो मेके नालाए औलेम लायो के नाइए
1: वन जंगल छ जुडिसि हो घेन बारी ल बाली नाली कुचुला चुली यात्रा र सताउसु छिनि ने चौसो सैले के खेले या
0: वन जंगल मेला दुके माइए मे लागि किनि पार्सना खर्ना नारे मिलि देखो नै सानो जने गेसये
1: बतास उचली जु बेला त हिजिन के कोटल ने के सतांगी ने हेनो के मछिनि ने चाउस गेसये
0: ने लागि ने निताई गे मने के पछिए सुनो अरुले मने के बचया
1: के छ थामला पोयाल ने लागि किसन किनि जे छोटा ओडा कार्यालय प्रहरी कार्यालय सहज सुनछरी गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाए उनी कार्यालय ल खबर दिइए
0: अनुरोध सुनसरी गाउँपालिका वन वातावरण सज विपद व्यवस्थापन समिति कोबाङ रोल्पा।

0: मेरो लागि मायुका लागि छ सुनसरी गाउँपालिका योमी मस्तज जरुरी सूचना जुहो बेला खेमरिदे गरम ओगोत्री जेउ बेला सुनो फुरी बतास ओचुदुरी जेउ आउ बेला क वन जंगल ल मे लागिने मस्तज सम्भावना पाए आउ ये गिने प्राकृतिक सम्पदा र तक्षेप्त जस खेम्नादे वातावरण मिलेने ल खेप्पा असर किएने रि उमूल र थाउने भुछे ताने वायुमण्डल ल कार्बन मस्तज तानादे भने जलवायु परिवर्तन ल असर सकिने सुनो नाखार नामेल मे लागिने सज जिनी जिनी लापरवाही सुनो चाउसो खेलगेमा दुख जिंगे को ठेल मेला की नाटी जन धने में खेता छिपी ताऊ फोकाई
1: वन
0: जंगल सर मेरा आदिवरी बाली एमएल एमए सोला न्यूजर फोटोग्राफर हटे
1: सलाई लाइटर सियाने चित्रालयजा रेने पोल गेने
0: पिकनिक वन भोज बाको छिन्नी मेले चाउसो सही खेना वन जंगल ओसो छाने दाइके बारी को चुरो विधि ओरे बनाई को बाजेंगे वन जंगल सर मेरा आदिवरी बाली एमएल एमए सोला न्यूजर फोटोग्राफर

0: लिजाउ वन उपभोक्ता समूह राई सामुदायिक बने होमी ढाल्ने छ अनुगमन दुने व्यवस्था चौसङ्गी दुए
1: गेछो छाने ला खोरे ल चाउसी पोलिए होलिदे तोरिन गाई गेज मेके लाइजु अब नजिरे बने गेम ये ल गेज मेके मालाये औरुले लायो के लाइए
0: वन जंगल स जुडिसी हो गेम बारी ल बाली नाली कुचुला चुली यात्रा रस चाउसो छिनी ने चाउसो सैले के खेले या
1: वन जंगल ल मेला दुके माइए मेवला दिकिनी पार सोना खर्ना
0: ओडा कार्यालय प्रहरी कार्यालय सर्ग सुनसरी गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिका कार्यालय खबर गिरिए
1: अनुरोध सुनसरी गाउँपालिका वन वातावरण सजग विपद व्यवस्थापन समिति कोबाङ रोल्पा

0: थाहासन चार 99.4 निष्पक्ष सक्रियता को अभ्यास
1: रेडियो थाहासन चार 99.4 मा अबको प्रस्तुति
0: जीवन